0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: वॉइस इन जरा
0: ए जरा मेरी आंखों में आंखें डाल।
1: द मेल वॉइस इज नाना पाटेकर वॉइस।
0: अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी।